तो हमने उन पर तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियां भेजी, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही गुनाहगार।

और उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे परवरदिगार ने यहूद को आगाह कर दिया था कि वो उन पर कयामत तक ऐसे शख्स को मुसल्लत रखेगा जो उनको बुरी बुरी तकलीफें देता रहे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जल्द अजाब करने वाला है और वो बख्शने वाला मेहरबान भी है।

और जब हमने उनके सरों पर पहाड़ उठा खड़ा किया गोया वो साएबान था, और उन्होंने ख्याल किया कि वो उन पर गिरता है, तो हमने कहा कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे जोर से पकड़े रहो और जो इसमें लिखा है उस पर अमल करो ताकि बच जाओ।

अगर तुम उनको सीधे रस्ते की तरफ बुलाओ तो तुम्हारा कहा न माने। तुम्हारे लिए बराबर है कि तुम उनको बुलाओ या चुपके हो रहो।

जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम हजार फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। UCP की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
1: سيد الأولين والآخرين
0: FM 92.6

वेलकम बैक। सुलह की दिफात तय हो गई। जो दिफात ये थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे, अगले साल मुसलमान मक्का आएंगे और 3 रोज कयाम करेंगे, उनके साथ सवार का हथियार होगा, मयानों में तलवारें होंगी और उनसे किसी किस्म का तारुज नहीं किया जाएगा। 10 साल तक फरीकैन जंग बंदी रखेंगे। इस अरसे में लोग मामून रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदो पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा, और जो कुरैश के अहदो पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा। जो कबीला जिस फरीक में शामिल होगा उस फरीक का एक जुज समझा जाएगा। लिहाजा ऐसे किसी कबीले पर ज्यादती हुई तो खुद उस फरीक पर ज्यादती मुतसव्वर होगी। कुरैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर यानी भाग कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस कर देंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो शख्स पनाह की गर्ज से भागकर कुरैश के पास आएगा, कुरैश उसे वापस ना करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया कि तहरीर लिख दें, और ये इमला कराया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर सुहेल ने कहा, हम नहीं जानते रहमान क्या है, आप यूं लिखिए बिस्मिका लहुम, अल्लाह तेरे नाम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया कि यही लिखो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इमला कराया, ये वो बात है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसालहत की। इस पर सुहेल ने कहा, अगर हम जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर हम ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से रोकते और ना जंग करते, लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का रसूल हूँ अगरचे तुम लोग झुटलाओ। फिर हजरत अली को हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें और लफ्ज़ रसूलुल्लाह मिटा दें, लेकिन हजरत अली ने गवारा ना किया कि इस लफ्ज़ को मिटाएं, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से मिटा दिया। उसके बाद पूरी दस्तावेज लिखी गई। फिर जब सुलह मुकम्मल हो चुकी तो बनु खुजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदो पैमान में दाखिल हो गए। ये लोग दर हकीकत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने से ही बनू हाशिम के हलीफ थे, जैसा कि आगाज किताब में गुजर चुका है। इसलिए अहदो पैमान में दाखिला दर हकीकत उसी कदीम हलफ की ताकीद और पुख्तगी थी। दूसरी तरफ बनू बकर कुरैश के अहदो पैमान में दाखिल हो गए। नविश्ता सुलह अभी लिखा ही जा रहा था कि सुहेल के बेटे अबू जुंदल अपनी बेड़ियां घसीटते आ पहुंचे। वो जेरी मक्का से निकल कर आए थे, उन्होंने यहां पहुंचकर अपने आप को मुसलमानों के दरमियान डाल दिया। सुहेल ने कहा, यह पहला शख्स है जिसके मुतल्लिक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला करता हूँ, क्या आप इसे वापस कर दें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो हमने नविश्ता मुकम्मल नहीं किया है। उसने कहा, तब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बात पर सुलह का कोई मामला ही ना करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो तुम इसको मेरी खातिर छोड़ दो। उसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भी नहीं छोड़ सकता। आपने फरमाया, नहीं नहीं इतना तो कर ही दो। उसने कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर सुहेल ने अबू जंदल के चेहरे पर चांटा रसीद किया और फिर मुशरिकीन की तरफ वापस करने के लिए उनके कुर्ते का गला पकड़कर घसीटा। अबू जंदल जोर जोर से चीख कर कहने लगे, मुसलमानों क्या मैं मुशरिकीन की तरफ वापस किया जाऊंगा कि वो मुझे मेरे दीन के मुतल्लिक फितने में डालें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जंदल सब्र करो और इसे बायसे सवाब समझो। अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जो दूसरे कमजोर मुसलमान हैं उन सबके लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा। हमने कुरैश से सुलह कर ली है, हमने उनको और उन्होंने हमको इस पर अल्लाह का अहद दिया है, इसलिए हम बदअहदी नहीं कर सकते। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उछल कर अबू जंदल के पास पहुंचे। वो उनके पहलू में चलते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, अबू जंदल सब्र करो, ये लोग मुशरिक हैं, इनका खून तो बस कुत्ते का खून है। और साथ ही साथ अपनी तलवार का दस्ता भी उनके करीब करते जा रहे थे। हजरत उमर का बयान है कि मुझे उम्मीद थी कि वो तलवार लेकर अपने बाप सुहेल को उड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने अपने बाप के बारे में बुखल से काम लिया और मुआहिदा सुलह नाफिस हो गया। सामईन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे में हम सुनेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
وقفے کے بعد نشست کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے۔

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड टू 90

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: And now, you are going to listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुबारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता है इसलिए किराया कैम किराया दे नहीं सकते इसका कर किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी अम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ उधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम घर की आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी फेर जाते जो भी होते हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी घर का सर्कट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे अब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है वो मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुरबत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पाँव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे इनसे इनकी इस्तेआत और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुरअज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: दादा, वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए,
0: मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
7: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

0: एक नई सोच, नई
1: सोच, एक नई पहचान,
0: एक नई लगन,
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1,
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में व्हाट्सएप को रिपोर्ट करें।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है। हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
1: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
2: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

0: न्यूज। मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
4: ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड 92.6

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1,
1: UCP No. 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए,
3: सुनते रहिए।
4: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
5: In sadaye Lahore ast, in sadaye UCP ast. Lotfan goosh bedahid FM 92.6 jahane UCP.

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज़ पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया प्रोग्राम जावेदा जिंदगी. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे दूसरों की जिंदगी में मदाखलत के बारे में. इसी चीज पर हमने अपनी जो लास्ट ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि क्यों कैसे लोग दूसरों की प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में मदाखलत करते हैं. सर, यहीं से मेरा एक सवाल है कि आपका एक दौर था जब आपने अपनी ग्रेजुएशन की और अब अ काइंड ऑफ 10 साल बाद एक नई जनरेशन आई जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं. अब वो इस चीज़ पे बहुत फोकस करती है कि प्राइवेसी होनी चाहिए और ये चीज़ बहुत मैटर करती है. वो घर में इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है जेन ज़ी के अंदर, कि उसको पता है कि प्राइवेसी क्या है और सबको प्राइवेसी की ज़रूरत है. इसी तरह लेकिन हम देखते हैं कि जब जो जेन ज़ी के सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म्स हैं उसके अंदर जेन ज़ी ही सबसे ज़्यादा कमेंट कर रही होती है पोस्ट के नीचे कि ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होती, ऐसे नहीं या ऐसे होती. तो आपको एक तो आपको क्या लगता है कि बाकी जनरेशनल गैप में ये चीज़ हल हुई है कि हमारे बाप दादा को ये चीज़ नहीं पता थी कि प्राइवेसी क्या है, वो हर चीज़ में इंटरफेयर कहीं ना कहीं करते थे, लेकिन जेन ज़ी को कहीं ना कहीं पता है कि प्राइवेसी क्या है.
2: देखें, जो हमारा मुआशरा था या आज से आप कह लो जेन ज़ी से पहले जो मिलेनियल्स का जो दौर था, इस दौर के अंदर भी मुदाखलत होती थी, लेकिन उस मुदाखलत के हवाले से कभी भी हम लोग परेशान नहीं होते थे कि मेरे वालिदैन, मेरे दादा, चाचा, नाना ये क्यों मुदाखलत कर रहे हैं. हम ये समझते थे कि ये हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं और हम ये समझते थे कि ये हमारे अंदर हमारी तरबियत का एक एलिमेंट है जिसके अंदर सारे लोगों ने मुझको रोकना भी है, मुझको अच्छा या बुरा करने से कहना या रोकना भी है. अच्छा, हमारी जो प्राइवेट लाइफ थी ना, उसकी जो एक्सपोजर था वो बड़े महदूद लोगों तक था. अगर मैं एक गाँव के अंदर रहता हूँ तो वहाँ पर ना तो मेरे पास मोबाइल्स हैं, ना कैमराज हैं, तो ना इवन के रेडियो हम सुनते थे या PTV होता था. लेकिन अब की जो प्रॉब्लम है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. जेन ज़ी अपनी प्राइवेट जिंदगी का उनको शऊर तो है, लेकिन उनकी प्राइवेसी फैमिली के आगे छुपी हुई है, लेकिन पूरी सोसाइटी या जहां जहां सोशल मीडिया नेटवर्क्स जा रहे हैं वहां वहां पे वो खुद को एक्सपोज कर रहे हैं. मतलब प्रॉब्लम ये है कि अब दूरी का जो डेफिनेशन है ना, वो चेंज हो चुकी है.
1: सही बात है.
2: पहले मेरे सामने मेरे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं तो वाकईतन वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ. अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं अपनी फैमिली में बैठा हुआ हूँ लेकिन फैमिली के साथ नहीं हूँ. मैं मोबाइल के अंदर किसी ऐसे शख्स से बात कर रहा हूँ जिनको शायद पर्सनली फेस टू फेस में मिला भी नहीं हूँ जिंदगी के अंदर, लेकिन उनके साथ मैं चिटचैट कर रहा हूँ, गपशप कर रहा हूँ और वहां से अपने लिए जो तफरी का एलिमेंट है उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो इस चीज ने मुझको अपनी फैमिली से कर दिया बहुत दूर और उन लोगों के कर दिया बहुत करीब जो के मेरे अपने हैं ही नहीं. अच्छा, अब जब मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, मैं चाहे 2 महीने फेसबुक पे ना हूं, इंस्टा पे ना हूं, कहीं पे भी ना हूं, किसी को एक जर्रा बराबर प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार ये बंदा जो है कल तक आ रहा था, आज क्यों नहीं आ रहा. लिहाजा ये जो आपका सोशल सर्कल है जिसको आप सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए से आपका डिवेलप होता है, वो सोशल नेटवर्क ने आपको शोहरत तो बहुत दे दी, फेम दे दिया, लाइक्स मिल गए, कमेंट्स अप्रिसिएशन की शक्ल में भी मिल गए और तनकीद की शक्ल में भी मिल गए, लेकिन वो जो ओरिजिनल एसोसिएशन होती है, जो आपके दोस्त, जो आपकी फैमिली, जो आपके पीयर्स आपको दे सकते हैं मुश्किल वक्त में, ये लोग आपको कभी नहीं देंगे. अच्छा, आपको हमेशा से अप्रिसिएशन मिलेगी. कोई एक ब्लंडर आपसे हो जाता है सोशल लाइफ के अंदर और हम सब की फिर एक प्राइवेट लाइफ है. अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब हमने अपने प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट नहीं रखा.
1: सही.
2: हम जब अपने हर लम्हे को मोबाइल पे जब रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, तस्वीर लेना शुरू कर देते हैं, इंतहाई खलवत के लम्हों की भी आप जब वीडियोस बनाना शुरू कर देंगे, तो आप ये समझते हैं कि ये मेरे हद तक महदूद है, ये आप तक महदूद नहीं है. ये मोबाइल कहीं गिर सकता है, ये मोबाइल कोई चोरी कर सकता है, इस मोबाइल का डाटा जो है उसको कोई हैक कर सकता है. लिहाजा आपकी वो सारी के सारी जो खलवत या आपके जो प्राइवेट लम्हात हैं, वो सारे के सारे लम्हात दुनिया के सामने फिर एक्सपोज हो जाते हैं. तो ये जो प्राइवेसी का हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अब किसी तरह की कोई प्राइवेसी है नहीं. मैं बाहर निकलूंगा, रोड्स के ऊपर सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, वो मुझे पता है एक शख्स जा रहा है, कहां कहां से गुजर रहा है, क्या कुछ कर रहा है. आजकल तो ये ट्रैफिक के जो बिल्स वगैरह आते हैं, जब ये चालान होते हैं बाइक पे बैठे हुए, तो बहुत सारी तलाकें इस वजह से भी हो रही हैं कि बीवी देखती है कि ये जो तस्वीर आई है ये पीछे खातून कौन बैठी हुई है तुम्हारे, तो वहां से फिर प्रॉब्लम हो रही है। तो बात यह है कि अब वो प्राइवेसी रहने गई जो एक प्राइवेसी का हम कहा करते थे। आज हमने अपने तमाम जो चीजें हैं उनको सोशल मीडिया पर जब रिकॉर्ड कर लिया, तो रिकॉर्डिंग के बाद अब दुनिया की मुदाखलत करने का जो तरीकाकार है वो बदल गया है, चोरी का तरीकाकार बदल गया है, जरायम करने के भी तरीकाकार बदल गए हैं। पहले डाका डालते थे, अब आप स्कैम के जरिए से आपसे पैसे निकलवा लेंगे और आप हंस के उनको 50,000-40,000 भेज देते हैं, आपके व्हाट्सएप हैक हो जाएंगे और आपके दोस्तों से पैसे निकलवा लिए जाएंगे। आपको एक मैसेज आ जाएगा जी आप ये आपके साथ किसी आपके भाई के साथ हो गया है, इतने पैसे भेज दो वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, और आपको इस तरीके से वो हिप्नोटाइज कर लेते हैं कि आप वो पैसे उनको फिर भेज देते हैं। अब ये वो सारे के सारे मसाइल हैं जो बदलती हुई दुनिया के साथ, टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ पैदा हो रहे हैं, और मुदाखलत के जो तरीकाकार है वो सारे का सारा बदल रहा है।
1: सर, आपको लगता है कि जेन ज़ी जो कहती है कि हर बंदे की एक प्राइवेट लाइफ है और उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन वही बात जो आपने कही कि मिलेनियल्स वाला जो दौर था उसमें वो कहते थे कि हम बेहतरी के लिए टोक रहे हैं, ऐसे नहीं करना, तो कहीं ना कहीं बच्चे की बेहतरी है, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो टोकना और दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत करना कहीं ना कहीं बेहतर था, या उनको नहीं पता था कि प्राइवेसी क्या है और होनी चाहिए हर बच्चे के पास?
2: देखिए, मुदाखलत जो हम कह रहे हैं ना कि दूसरों की जिंदगी में मुदाखलत, कि दूसरा मेरे लिए है कौन, अगर तो दूसरा मेरे लिए मेरा कोई भाई है, मेरी बहन है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, या मेरे अपने दोस्त अहलो अयाल है, तो मुदाखलत मैं करूंगा, ठीक है, कि मैं ये समझता हूँ ये मेरा छोटा भाई है और मैं क्योंकि इस रास्ते से चल के आया हूँ इसको ये काम नहीं करना चाहिए, नंबर वन, एक ये मुदाखलत की शक्ल है। दूसरी ये है कि मैं मुदाखलत कर रहा हूँ कि यार ये जो काम कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहे हो, कीप इट अप, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, और आपकी मुदाखलत को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिवली या नेगेटिवली मेरे फैमिली मेंबर्स को हक है मेरे हवाले से बात करने का, ठीक है, कि वो मुझसे कंसर्न रखते हैं, ठीक है, मेरा एक्शन या रिएक्शन या मुआशरे के अंदर मेरा जो स्टेटस है वो उनके ऊपर भी असरअंदाज होगा किसी भी तरह से, अच्छा, लेकिन वो लोग जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, या मैं रोड पे जा रहा हूँ और पता नहीं क्या कुछ मैं देख रहा हूँ रास्ते में, तो मैं जाके पूछूंगी तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने ये किस रंग का लिबास पहना हुआ है, ये तुमने सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ, तुम्हारे गाड़ी का कलर कैसा है। अब ये वो चीजें हैं कि ये वो लोग करेंगे जो हल्के से भी बादशाह होंगे ना, वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। हर वो शख्स जो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं महसूस में, ठीक है, कि मुझे फील करो कि मैं भी हूँ, तो अपनी एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए कि मैं भी हूँ, तो मैंने कोई ना कोई ऐसा चुटकुला छोड़ देना है, बैठा बैठा कह दूंगा कि अच्छा जी ये जो तुमने ये चीज पहनी है ना, लाइक अभी मस्जिद में आप नमाज पढ़ने गए, आपने टी शर्ट पहनी हुई है और बाबा जी कह रहे हैं तुम्हारी नमाज, ठीक है, अब ये भी एक मुदाखलत है कि अल्लाह ताला का काम है और तुम दखल अंदाजी कर रहे हो कि आप मुदाखलत कर रहे हो, अच्छा तुम अगर ये वाला काम करके आप आगे जाओगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। तो असल में हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ पे भी दुनिया मसरूफ है ना, जहाँ पे भी लोग जो है वो बिजनेसेस कर रहे हैं, आप वेस्ट में चले जाओ, किसी के पास सर खुजाने का टाइम नहीं है, मगरबी मुआशरों के अंदर आप रहते हो तो वहाँ पे हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, वहाँ पे तो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिविटी है, जहाँ पे मुदाखलत होनी चाहिए वहाँ पे भी वो नहीं करते, ना फैमिलीज करती हैं, औलाद के साथ जो कुछ हो रहा है वो मगरबी मुआशरे में वो नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हम सारे मुआशरे को, इसका शायद मस्बत पहलू हम ये ले सकते हैं कि लोग दूसरों के बारे में कंसर्न है अभी तक हमारे मुआशरे में, और वो अपनी तरह से तो कंसर्न शो कर रहे हैं कि अच्छा यार इसके साथ ये ना हो जाए, और इंटेंशन हमें नहीं पता कि उनको टॉन्ट करना उनकी इंटेंशन है या वाकईतन उनकी सलाह करना उनका इंटेंशन।
1: सर, मुझे लगता है इस पे जॉन एक बहुत अच्छा शेर कह के गए थे कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है, तो हर मतलब हादसा ही बंदे को सिखाएगा कि उसने उस चीज से बाज आना, कोई बातों से नहीं सीखता। अब हम इस पे बात करेंगे कि इसके सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या कैसे लोग इसको परसीव करते हैं, पर यहाँ पे वक्त में एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। प्रोग्राम जावेदा जिंदगी में खुश आमदीद। हम ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की कि कैसे लोग जो हैं वो दूसरों की ज़िंदगी में मदाखलत कर रहे हैं और किस तरह इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। फिर हमने बात की कि जेन ज़ी ने प्राइवेसी को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है या पर्सनल चीज़ें हैं जिसमें लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जेन ज़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अपने तरीके से लोगों की ज़िंदगियों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। सर, अब चूंकि हमारा पास वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि हम इसको कैसे पॉजिटिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मदाखलत को, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ायदा तो है। अगर कोई किसी को किसी चीज़ पर टोक रहा है तो हो सकता है कि वो गलत हो और वो उससे अपने आप को बेहतर कर ले या ठीक कर ले, तो चीज़ गलत नहीं है पर इम्प्लीमेंटेशन गलत है कि आप किसी को ज़्यादा टोकना शुरू कर दो तो एक बंदा तंग आ जाता है कि यार ये तो हर दफ़ा यही करेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कैसे हम इस चीज़ को पॉजिटिव इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा सकते हैं।
2: देखो, एक अमूमन ना कोट हम बहुत बचपन में सुना करते थे, अभी वक्त नहीं है कि इसकी, कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। अच्छा, अगर जो कोई बंदा कह रहा है मुझे उसका तजिया करना है कि अच्छा वो किस परस्पेक्टिव में बात कर रहा है, उसमें मेरे लिए बेहतरी है, वाकई मेरे लिए बेहतरी है, या दूसरे बंदा जो है वो जानबूझ के मुझे इस महफिल के अंदर डिग्रेड करना चाह रहा है या डीमोरलाइज करना चाह रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि जानबूझ के महफिल में आप बैठे हुए हैं, दोस्त यार हैं, तो एक दो दोस्त जो होते हैं जिनकी आपस में लगती है, तो वो आपको उस महफिल के अंदर जानबूझ के जो है वो लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपको इस तरीके से दूसरों को फील करवाने की कोशिश करेंगे कि यार ये तो ऐसे ही, ये तो बंदा फजूल सा है। अच्छा, अब इस सिनेरियो के अंदर आपने ऐसे तमाम लोगों को जो आपकी एनर्जीज को डाउन करते हैं, जो आपकी मोटिवेशन को डाउन करते हैं, जिनके पास बैठ के, जिनसे बात करके, जिनसे मुशावरत करके आप मनफी एहसासात को अपने साथ लेके जा रहे हैं और उदासी को साथ लेके जा रहे हैं, उन लोगों को अपनी जिंदगी में आपने माइनस कर देना है। और वो तमाम लोग जिनकी कही हुई बातों को आप कोटेशन के तौर पर ले रहे हैं, जिनकी मुदाखलत आपके लिए सपोर्ट है, जो वो कहते हैं ना कुब्बे नु वजी लाते और सीधा हो गया, जो इस तरह के लोग होते हैं जो आपको अल्टीमेट डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी डिग्रेडेशन जो है वो आपको उन रास्तों पर डाल देती है जो शायद आपने भी नहीं सोच रखे होते। लाइक मैं अपना एक जाती वाक्या आपसे शेयर करता हूँ कि घर में जैसे टसल वगैरह हो जाती है, तो टसल के दौरान भाई ने मुझको गुस्से में आके कुछ इस तरह के अल्फाज बोल दिए, तो मैं

0: गुस्से में आके घर से चलाकर मैंने कहा मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ जहाँ पे जाके मैं अब नौकरी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। 2001-2002 की बात है। तो मैं वहाँ सिस्टर होती थी उनके पास चला गया और वहीं पर जाके मैंने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उस भाई की वो जो मुदाखलत थी, उसने वो कहते हैं ना कि जो अपना होता है कि वो आपको फेंकता भी वहाँ पे है जहाँ पे छऊँ हो, ठीक है। तो वो इसी तरह का सीन बना। तो फिर मैं वहाँ पे गया, वहीं से मेरी जो टीचिंग का सफ़र का आगाज़ हो गया। तो तीसरे दिन मैं पढ़ा रहा था जब मुझको ये बात की गई, अगले दिन मैं अगले शहर चला गया और शहर में जाके मैंने वहाँ जाते हुए देखा कि स्कूल पे ज़रूरत उस्तादा का बोर्ड लगा हुआ है। शाम को मैं वहाँ पे चला गया, जी मैं उस्ताद बनना है, ठीक है। उन्होंने कहा जी शाम में अकेडमी है, आप आ जाए, हम देख लेते हैं। बच्चों को पढ़ाया, बच्चों खुश हो गए, उन्होंने कहा जी कल से आप आ जाए। तो वहाँ से आपका एक मुदाखलत हुई थी, लेकिन मेरे लिए वो सपोर्ट बन गई। उसने मुझे आगे बढ़ने में रोल जो है उसका बहुत अहम है। देखो ये मेरे लिए बड़ा अहम है कि दूसरों की बातों को मैंने अपने लिए एनर्जी बनाना है या अपनी एनर्जी को कम करने का जरिया बनाना है। दो तरह के लोग होते हैं, कुछ तो इस तरह की बातों को बुनियाद बना के घर से निकलना बंद कर देंगे, आगे बढ़ना बंद कर देंगे कि वाक्यतन वो लोग ठीक कह रहे हैं, लिहाजा मैंने ये काम नहीं करना या मुझ में ये कैपेसिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। एक वो होते हैं जिनके अंदर आग लगा देते हैं जुमले, कोई बात करता है आपको और आपके अंदर वो एनर्जी, वो ताकत, वो तवानाई होती है, आप खुद से प्रॉमिस करते हैं कि वो, जैसे वो पंजाबी में मुंह पे हाथ मार के कहते हैं ना कि हुण मैं कुछ ना कुछ करके आना। तो वो वाला जो सीन है ना, वो लोग भी आपके लिए जो डेस्टिनी है ना, जो अल्लाह ताला का ग्रैंड सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर ऐसे लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। उन लोगों का वो जो पुश होता है ना, वो उसको आपको बहुत आगे तक लेके चला जाता है। और वो तवानाई जो आपके अंदर सो रही थी, जो राख के नीचे बैठी हुई थी, और वो राख थी उदासियों की, वो राख थी मायूसियों की, वसवसों की, नाउम्मीदियों की, यार मैं नहीं कर सकता, लेकिन किसी एक ने बात की और उसकी बात ने आपके अंदर वो आग लगाई कि आपने रातों की अपनी नींदों को भी, वो कहते हैं ना खराज मांगता है हर बड़ा ख्वाब, जितनी बड़ी कीमत होती है ना चीज की, जितनी कोई कीमती चीज होती है उसकी कीमत भी उतनी बड़ी होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आपने बड़ी मंजिलों के जो मुसाफिर होते हैं, उनके रास्ते भी उतने ही कठिन होते हैं, उनको रास्तों में रुकावटें भी उतनी ही बड़ी फेस करना पड़ेंगी, और फिर ही वो उस मंजिल पे पहुंचने का रवादार है। अगर वो उन प्रॉब्लम्स के ऊपर रोना शुरू कर देंगे ना, तो वो रवादार भी नहीं है और वहीं पे बैठ कर उनको बस रोना धोना करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने कुछ ज़िंदगी में करना है, वो इस तरह की कितनी ही बातों को सुनते हुए, इग्नोर मारते हुए, बॉदर ना करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर एक वक्त ऐसा आता है। और इसकी मिसाल आप देख लो, आप गली से गली में निकलो, एक बंदा निकला है, मैंने जाना है शॉप से सौदा खरीदने, रास्ते में गली में कोई कुत्ता बैठा हुआ है, वो भौंक रहा है। अच्छा, अब आप उससे डर के घर में चले गए, ओहो बाहर कुत्ता है। अच्छा, आप अगर उसी किसी तरीके से डॉज करोगे, अगली गली में एक और मिल जाएगा, फिर कितने कुत्तों से डर के आपने घर में बैठना है। तो बात ये है कि हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, वो इस तरह किरदार अदा करते हैं जो आपको डिमोरलाइज कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। देखो यहाँ पे लोग ऐसा नहीं करते, देखो अगर तुम ये करोगे ना तो होना कुछ भी नहीं है। मेरा भी फलां गया था करने के लिए, वो आज आ गया, वो आज मजदूरी कर। अब इस तरह की वो बातें हैं जो वो चाहते हैं कि कहीं ये भी ना बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो उस मामले में या अपनी काविश में नाकाम हो गया था, तो कहाँ लिखा है कि मैं भी नाकाम हो जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे मेरी एफर्ट, मेरी अटेंशन और मेरी एनर्जीज और मेरी दुआओं का सिला मिलना है। अब उसने जो किया था मुझे नहीं पता उसकी कहानी क्या है, लिहाजा ऐसे लोगों की बातों को, अपने अंदर छुपी हुई मायूसियों की उस राख को उस चिंगारी में से हटाने के लिए आपने इस्तेमाल करना है जो चिंगारी आपके अंदर भड़क रही है। और जो बातों से आपके अंदर चिंगारी भड़का देते हैं, देखने में आपको उनकी बातें बुरी भी लगेंगी, लेकिन असल में वो आपके मोहसिन होते हैं।
1: सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, मैंने तो इस आज के शो से बहुत कुछ सीखा है, मुझे उम्मीद है कि हमारे सामईन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और लोग कह के जाते हैं बस आपने पॉजिटिव रहना है और आपने आपकी जो एक स्ट्रगल है उस पर चलते रहना है, और हमें उनसे लेट डाउन नहीं होना और बल्कि उसे कुछ पॉजिटिव निकालना है कि अगर ये हमें कुछ कह के गए तो इसमें हो सकता है हमारे लिए कुछ बेहतरी हो और हम कैसे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुँचता है, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। खुदा हाफिज़।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया
1: द आवाज दे द लाहौर द आवाज दे द यूसीपी नु आव रही FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर एसएमएस करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या एसएमएस के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें। पीटीए

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: इस सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया
1: 24/7 ओनली ऑन FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
2: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस,

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
0: एक नई लगन।
1: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
1: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
1: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
1: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
1: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं। चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।